0: श्रीदीप नारायण भगवान की जय। श्री देवेश्वर महादेव की जय। सत गुरुदेव की जय।
1: Ishva Guru Mahamandaleshwar Swami Maheshwara Nandaji Guru Deva Ki Jai. Shri Alakpurisha Mahadeva Ki Jai.

आप कोई नहीं कर सकता है। आप या खाया इसका, हाँ वो मीट का इसका और ये केज आदि का वो उन्होंने वो खाया, उन्होंने वो खाया हुआ है, तो बोलो ही आप करो, लेकिन बहुत बहुत प्रॉब्लम होगा, पर्दा होगा बहुत। ऐसे तो हाँ खा रहे हैं हम अच्छा और वैर भी करते हैं, वो ये तो करने होगा, लेकिन बाद में इतना वो होगा बाद में, फिर बहुत दुख की बारी दुख करी। सो व्हाट यू कैन डू विद विक्रावन, मे बी दैट ऑलवेज गो इट होम नाउ एंड डोंट इट ईट एनीथिंग दैट थिंग्स, बट वेरी गुड, ओनली वेरी गुड ईटिंग, वेरी गुड वन विच इज दैट इज नॉट द वाट वी कॉल द एनिमल्स एंड दीस एंड उनके वो नो, ओनली ईट मोर नाउ वेरी मच हो तो ओनली फ्रूट्स वेरी गुड एंड दीस एंड दैट एंड दैट। सो दैट्स इट इज इट विल बी दोज हु आर हैव खाइंग मिनी मिट्टी एंड दिस एंड दैट एंड दिस ओके द फ्रेंड्स मैनी फ्रेंड्स एंड दिस एंड हाउ वी आर देर अमार न ओके एक दिन तो खा लेंगे, तो वो एक दिन भी वो खा लिया है इतना सॉरी सो दैट इट विल गो आउट नी इट इज दैट हाउ मैनी पीपल यू नो एंड इट विल बी ईटिंग द वो ड्रिंकिंग लाइक दिस या दिस द गाइंग ड्रिंक दिस दे थिंक इट इज वेरी गुड इज विद दिस ड्री other this like this and drink and then it is the itna hai wo us aadmi aur wo aise hai unka dukh bahut hai kya kare yes

0: दीप नारायण भगवान अलकपुरी समादेव देवपुरी जी महादेव सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान सत्य सनातन भारत माता की जय।
1: विश्व गुरु स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय।

निज प्राणा सात्विक एनर्जीज फ्लोइंग इन द बॉडी एंड ऑल द टॉक्सिन इज एक्सहेल्ड.

0: My Lord, you are the Shakti.
1: Můj pane, si také Shakti.
0: And you are also Bhakti.
1: A Bhakti.
0: Devi.
1: Bhakti Devi.
0: Aap hi Surya Prakash. O Devpuri ji, you are the Surya, the sun Prakash.
1: O Devpuri ji, ty si také slunce.
0: Aap ho Vedon ke gyata. आप हो भक्त उर्वासी, आप हो वेदों के ज्ञाता, ओ महाप्रभु जी, you know the Vedas, you know the Vedas.
1: ओ महाप्रभु जी, ते ज्ञाश वेदी.
0: आप हो भक्त उर्वासी, and all the bhaktas are in our heart.
1: A všichni bhaktové jsou v našich srdcích.
0: आप हो वेदों के ज्ञाता, आप हो भक्त उर्वासी, आप हो संत नाम के दाता, आप हो सत नाम के दाता, ओ गुरुदेव, यू आर द सत द ट्रूथ.
1: ओ गुरुदेव, ते इसे प्रावधान.
0: नाउ, सो फ्रॉम दैट ट्रूथ नेम यू आर द दाता, ओ गॉड.
1: ते प्रावधे ते इसे.
0: आप हो भक्त उर्वासी, and you are Gurudev in our heart.
1: A Gurudev jsi v našem srdci.
0: Urvasi is the heart.
1: Urvasi je srdce.
0: आप हो वेदों के ज्ञाता, you are knower of the Vedas.
1: Znáš Vedy.
0: आप हो भक्त उर्वासी, आप हो सतनाम के दाता, and you are the name of the God, everything you are giving us.
1: A jsi jméno Boží a všechno nám dáváš.
0: Sat naam ke data. Sat means the truth.
1: Sat je pravda.
0: Aap ho nij svarup ke gyata, and you are that of the gyata, the knowledge, knower.
1: A jsi znalec.
0: You are the form of the knowledge, gyata.
1: Jsi podobou poznání.
0: Namo, om namo, Prabhu Deep Pranama, Brahmananda Urvasi. And about Brahmananji, it is om namo, Prabhu Deep Pranam. So, om Mahaprabhuji, Prabhuji said, Pranam, salutation. Brahmananda Urvasi, Brahmananda, Brahmananda, Brahmananda. There you are residing, O my Devpuriji, Gurudev.
1: Takže přebýváš tam, můj Devpuriji, můj Gurudeve.
0: Namo, Om Namo, Prabhu Deepaya Vinasi, Apo Brahma, Apahi Vishnu, आप हो कैलाश के वासी, आप हो नारद, आप हो सारद, आप हो शेष सुकरासी, आप हो ध्यानी, आप हो ज्ञानी, आप हो योग प्रकाशी, आप हो देव सब देवी, आप हो सूर्य प्रकाशी, आप हो ब्रह्म विनिर्वाणी, आप हो चहु आप के वासी, चहु इन ऑल डायरेक्शंस यू आर देयर.
1: सी ve všech směrech.
0: आप हो वेदों के ज्ञाता, आप हो भक्त उर्वासी, आप हो सतनाम के दाता, आप हो निज स्वरूप के ज्ञाता. ओम नमो प्रभु दीप प्रणामा, ब्रह्मानंद उर्वासी, सत्य सनातन धर्म की, देवादिदेव अलकपुरी जी महादेव की, देवादिदेव देवेश्वर महादेव की, परम आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय. सत्य सनातन धर्म स्वामी माधवानंद जी भगवान की, सत्य सनातन धर्म की. ओम शांति शांति शांति हरि ओम हरि ओम
1: ईश्वर गुरु परमांशी स्वामी महेश्वरानंद गुरुदेव की जय।

ॐ तत्सत् हरि ॐ तत्सत् हरि ॐ तत्सत् हरि ॐ तत्सत् हरि ॐ तत्सत् जपा कर यही महामंत्र हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। दीप नारायण भगवान की। देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की। सद्गुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की। सत्य सनातन धर्म की। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।

हथेलियों को अच्छी तरह मल लीजिए, आंखों पर लगा लें। परम पूज्य पाद स्वामी जी महाराज, जो स्वयं ही करुणा और दया की प्रतिमूर्ति हैं, पूज्य स्वामी जी महाराज, आदरणीय डीजी साहब, आदरणीय स्वामी जी और उपस्थित सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, सचमुच ये भारतवर्ष देश हमारा एक ऐसा देश है जो एक दूसरे को इतना मतलब बताया गया हमारे वेद के अंदर कि हे मनुष्य, तुम एक दूसरे से ऐसा प्रेम करो जैसे गाय अपने नवजात बछड़े से प्रेम करती है। उसमें ये बताया गया है कि जैसे गाय क्या करती है, अपने बछड़े को ना चाट चाट करके, अपनी जीभ से चाट चाट करके उसकी सारी मलिनता को दूर करती है, वैसे मनुष्यों तुम एक दूसरे से प्रेम करो। और तुम में ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, अज्येष्ठासु अकनिष्ठार्थ एते सम भ्रात्रो वावृदु, सब मनुष्य तुम्हारे भाई भाई हैं। ये जो पृथ्वी है, माँ है।

परमात्मा ही तुम्हारा पिता है। तो जो नेपाल के अंदर जो इतनी बड़ी जो ऐसी घटना घटी भूकंप की, और पूज्य पाद स्वामी जी महाराज ने कितना आप सबके सहयोग से जो उन्होंने भेंट दिया, वो बहुत ही इनके हृदय की करुणा और दया का ही प्रतीक है। तो हम जीवन में यही मनुष्य के साथ जाता है, जैसे कि अभी गुरु जी महाराज का बता रहे थे कि मनुष्य के साथ केवल दो ही चीज़ें जाती हैं, एक तो उसका किया हुआ कर्म जाता है, एक उसकी प्रभु का नाम जाता है, क्या ना। जब मनुष्य वो जाता है, मरने जाता है, तो उसके साथ दो ही उसके जाते हैं कि एक अच्छा कर्म परमात्मा का मतलब किया हुआ परमात्मा का नाम, एक किया हुआ उसका कर्म। तो हम लोग जितना भी हो सके वहाँ के लिए, जो भी आपकी अपनी श्रद्धा हो, भक्त जितना भी आपसे बने, तो हम नेपाल वालों के लिए अधिक से अधिक कुछ करें। मैं भी अपनी तरफ से कुछ करना चाहती हूँ, पूज्य स्वामी जी को आश्वासन देती हूँ, और आप सब लोग भी अधिक से अधिक करें, क्योंकि यही एक समय आता है जब हमारी परीक्षा होती है कि हम कितना दूसरों के लिए कर सकते हैं। अपनी आत्मा के तुल्य ही हम दूसरों की आत्मा को तुलें, जैसे हमारे जैसे अभी पूज्य स्वामी जी महाराज ने बताया, वसुदेव कुटुम्बकम, सारी वसुधा ही कुटुम्ब है। यस्मिन सर्वानि भूतानि आत्मैव भूत विजानत तत्र को मोह कह शोक एकत्वम मनु पश्यत। सब मनुष्य अपनी आत्मा के तुल्य है, जैसे हमारी आत्मा है वैसे ही है। और पूज्य स्वामी जी का तो मैं आपको क्या बताऊं, उनके अंदर पशु पक्षियों के प्रति भी इतना ज़्यादा है, गाय के प्रति इतना ज़्यादा है, कहते हैं ये मूक प्राणी है। स्वामी जी महाराज कहते हैं ये मूक प्राणी है, कि इनको ये लोग बोलते नहीं हैं, तो इनके प्रति ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। इसी तरह प्राणी मात्र के प्रति इनका प्रेम है, तो हमारे हृदय में भी प्राणी मात्र के प्रति प्रेम हो। यही आज हमें पूज्य स्वामी जी जो हमें प्रेरणा देते हैं, पूज्य गुरुदेव मादानंद जी महाराज जी कहते थे सेवा ही परमो धर्म, सेवा सबसे बड़ा धर्म है, सेवा से बढ़कर कुछ नहीं है। तो सेवा, प्रेम, करुणा, दया, यही मनुष्य के साथ एक हो जाता है। प्रभु भगवान कहते हैं कि वो नर मतलब पूजा तुम कुछ नहीं करो, लेकिन यदि दूसरों की तुमने सेवा कर ली, दूसरों के प्रति अपने दुखों को दूर कर दिया, इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं। आपको एक उदाहरण देती, एक महात्मा जी थे, रोज बहुत साधना करते थे, बहुत पूजा पाठ करते थे, लेकिन उनके मन में फिर भी शांति नहीं थी। एक बार कोई रात को व्यक्ति उनका बहुत करा रहा था, बहुत दुखी था, बहुत करा रहा था, बहुत ज़्यादा दुखी था, तो उस समय उन्होंने उसकी रात भर सेवा की, तो उसका फल ये हुआ कि वो सेवा से सुबह जब वो उठे, महात्मा जी कहते हैं जीवन में मुझे ऐसी शांति कभी नहीं मिली जो आज मिली है, मत वो शांति सेवा से मिलती है। तो दूसरों का कष्ट दूर करके तो देखो तो सही, कितना हृदय में एक शांति मिलती है, कितना मतलब वो होता है। तो बहुत ज़्यादा हमें तो बस यही जीवन का, हमारे स्वामी जी महाराज जी, हमारे जो गुरु जी थे, वो कहते थे बस दूसरों की सेवा करो। आते ही वो यही पूछते थे, दूसरों को दूध मिला नहीं मिला, छाछ मिली नहीं मिली, हर समय दूसरों की सेवा के लिए कहते, दूसरों के कष्ट को दूर करो। परमात्मा इसी में, सब मानव के अंदर भगवान समाये हुआ है, ईश्वर सबके अंदर है, सबके अंदर समाये हुआ है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा ना, ईशा वास्य मेदगुम सर्वम यत किंच जगत त्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृदह कस्य सुदिनम। ये सारा संसार ईश्वर से व्याप्त है। जब मनुष्य ये विश्वास कर लेता है कि सब जगह ईश्वर है, सर्वत्र सब में ईश्वर है, तो कभी किसी से घृणा नहीं करेगा, सबसे प्रेम करेगा। तो हमें सबसे अपना मानना है, सबको अपना मानते हैं, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। सबको ईशा मसीह ने जो कितना उनका था कि जो उनको वो उनको जो गोली वो जो चढ़ा रहा है, कील ठोक रहा है, उनको कहता है प्रभु इनको क्षमा करना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, तो उनके हृदय में कितना वो था। तो मैं अधिक क्या कहूँ, जो स्वामी जी महाराज से बस इतना ही निवेदन करती हूँ कि मेरे हृदय के अंदर भी वो आशीर्वाद दें कि मैं भी लोगों के अधिक से अधिक लोगों के प्रति करुणा रखूँ, लोगों के प्रति दया करूँ। दया धर्म का मूल है, मैं अधिक कुछ नहीं कह जाती। और हमारे योग शास्त्र में भी यही सिखाया जाता है, योग का अर्थ ही होता है जोड़ना, अपनी आत्मा को उस परमात्मा से जोड़ने को योग कहते हैं। मनुष्य अपनी आत्मा को परमात्मा से तभी जोड़ सकता है जब उसके वो हो जाए, जब उसका मन पवित्र हो जाए। कहा ना भगवान कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा, कि जब तुम्हारा मन पवित्र हो जाएगा तो हमारी आत्मा स्वयं ही उस परमात्मा से जुड़ जाएगी, और परमात्मा से जुड़ेगी तो हमारे को सुख और शांति व आनंद मिलेगा। तो हम नर की सेवा करें, भगवान इससे सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं। ओम शांति।

0: चेक करवा करके इस कार्य के लिए भेजवा रहे हैं। जितना भी हो आप तो अभी तो घोषणा नहीं कर सकते, कोशिश करेंगे हम भी वहाँ भिजवाए आपने कॉल। ठीक है,
1: ठीक है। So you want me to appeal to my okay.
0: In America.
1: Okay.
0: To Yoga and Delhi Foundation in Austria.
1: Okay. Yoga and?
0: Delhi Life Foundation, Austria or India.
1: Okay.
0: India. Yoga and Delhi Life.
1: Yoga
0: Foundation.
1: In?
0: Yoga in Delhi Life.
1: Yoga in Delhi Life.
0: Foundation.
1: In Austria.
0: No, New Delhi.
1: New Delhi. Friends, Swamiji. Swamiji. DG, Pushpa ji, I'm no speaker. I've come to Jaipur to actually get treatment for allergies. All my life I've suffered this, and the only recourse is yoga. It is sad when a calamity happens. Calamities, sorrow, transgresses boundaries. It is universal. And it is time we have to look beyond ourselves, look beyond our boundaries, and stop looking at differences about nations, caste, creed, races, and to think of humanity as one. The recent disaster in Nepal hits home, and I appeal to all of you and to all my friends who may hear this in the Silicon Valley, in the United States, where I live, that friends, let's come together, let's help our neighbor, let's donate to yoga in daily life. Yoga in Delhi Life Foundation. It has a branch office in Delhi, and all of you who know me, who may want to contribute to this, when I get back, please contact me, and we'll find a way to get the money, and we'll get the funds to Nepal. And I personally announce that I will give a check of 51,000 to this cause. Thank you.
0: In rupees?
1: Yes.
0: Thank you. Ke dollar?
1: Did I say? Thank
0: you. Among us, there is sitting one Brahmarishi, and he is going to sing a bhajan of the Daya Karuna Shanti, Vishwa Shanti, Nepal ke liye. So, Brahmarishi ji, aaiye aap, and please sing one bhajan. Darad dukh dur ho jaye, daya ho jaye. Misri Lal ji, Brahmarishi, P. Thawla, Nagore. Kashmir.
2: Nagore. दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। सभी सज्जनों, 84 लाख जोन के अंदर है जो सबसे श्रेष्ठ जोन बताइए वो मानव तन है क्या? बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा। तो ऐसी क्या चीज है कि भाई मानव में ऐसी क्या एक विशेषता है जिससे हम बार बार मनुष्य बनेंगे, और वो भी भारत खंड के अंदर बनेंगे। 84 लाख जोड़ में 27 लाख घासपूस, 9 लाख जलपान, 11 लाख ईट पतंग, 10 लाख पखेरु, 23 लाख पशु और 4 लाख मान का जोड़ है। 4 लाख मान का जोड़ के अंदर कौन मनुष्य है ये देखने का है। 3,99,999 मनुष्य है, लेकिन बिना सिंह पूछ के। हमारे माधवानंद जी महाराज गुरु जी कहते थे, बिना सिंह पूछ के जो मान लो ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, दया नहीं है, क्षमा नहीं है, शीलता नहीं है, शुचिता नहीं है, समता नहीं है, तो मनुष्य कहना लायक नहीं है। तो महापुरुषों ने कहा कि लाखाम सम्राट अपने धर्म चक्रवर्ती महादेवानंद जी महाराज, सार्वभौम जगत गुरु महामंडलेश्वर परमंश योगी राज श्री महेश्वरन जी महाराज, ऐसी दिव्य आत्माएं हम, ये जो परमात्मा ने भेजी है महाराज, इनको परमात्मा ने स्वयं भेजा है अपने रूप के अंदर, क्या जहां दया है कबीरा हम आए संसार में, कबीरा हम आए संसार में, जग हंसे हम रोए, बहुत खुशी होती है ये जीव आता ना महाराज संसार के अंदर, परिवार कुटुंब में सब में कुछ ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। तो आज भी जो है महात्मा नंद जी महाराज के, मैं उनके सानिध्य में मेरे को ऐसा मेरा सौभाग्य मिला है और कई जन्मों के मेरे पुण्य उदय हुए तब मैं इनकी शरण में आया हूं क्या, तो आज भी मेरे को ऐसा दिन नहीं जाता है, ऐसा कोई घड़ी पल नहीं जाता है जिसमें मेरे हृदय के अंदर जो महात्मा नंद जी महाराज जो है ना मेरे को पकड़ के उठा के लेके जाते थे कि चलो। और उनकी उम्र क्या उस समय 80-82 साल की उम्र, और इतना प्रेम कि महाराज जी श्री को, तो इसके बारे में एक बता दूं, धर्म के बारे में, दया के बारे में, करुणा के बारे में।

करे। आज जो नेपाल पर जो संकट आया है उसके अंदर हम ठीक है, हमारे से आर्थिक जो हो रही है वो तो कर ही रहे हैं, इसके अलावा हम अगर वहां जो भी आज भाई बहन माता पिता किसी भी परिवार किसी कुटुंब में दुख आया है, हम यहाँ बैठे बैठे उनके लिए परमात्मा से प्रार्थना कर सकते हैं कि भाई आपका दुख नहीं हमारा सभी का दुख है। क्या

करे। प्रार्थना कौन सी? अब तो पहुंचा चौथी धामा, सब संता का सरिया कामा, बेखरी मध्यमा पसंती और परा। परा से जो प्रार्थना होगी उसमें हमारी वहां पर हाजिरी होगी, उसमें हमारी सुनवाई होगी। महाराज धीरे के साथ प्रार्थना करो परमात्मा के सामने, हे प्रभु ये जो संकट आया है आगे ऐसा संकट इस पृथ्वी पर नहीं आवेगा। जब परमात्मा की कृपा होगी

0: शुरू कीजिए आरती।
1: ओम रीम रे चालू करूं?
0: हाँ आरती।
1: ओम रीम रत्नेश्वरी नमः ज्वालामलिनमः सर्वोपचारार्थे गन्धावकृतपुष्पाणि समर्पयामि। ओम यादेवी सर्वभूतेषु ज्योतिरूपेण समस्तिदानमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धावकृतपुष्पाणि समर्पयामि। ओम जय गुरु बड़ी वाली बोलना विक्रम भैया।

गदाधर परमहंस गुरुदेव जी तीन लोक के देव सुर नर मुनि सब संत जना नित उत्कर्ष से सतगुरु।

0: čaute vasi. Ako vedoke gyata, ako bhaktur vasi, ako satanam kedata, ako nitsvarupa ke gyata. Om namo prabhudi pranama, brahmananda nurur vasi.
1: Ki jai. Ki jai. Ki jai. Ki jai. Ki jai. Ki jai. Ki jai. Ki jai. Ki jai. Ki jai.
2: Mahamandalesha Shri Pujya Swami Tarpuri de Maharaja Ki Jai.
3: वीराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ स्वस्ति साम्राज्यं बहुज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराजमाधिपत्यमयं सौन्दर्याय सर्वगौमः सर्वाशान्तात् प्रारदात् पृथिवी समुद्रपर्यन्ताय ओमैकदन्ताय विद्महे उग्रदन्ताय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ओम तद्भृगाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् नाना सुगन्धि पुष्पाणि यतः काल उद्भवाञ्च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरा ओम पूर्वास्वस्ती सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि यानि कानि च पापानि जन्मान्तर कृतानि च अन्तरवाणि यस्तं दुर्दक्षिणाय पदे पदे मंत्रहीनं गृहाय नम भक्तिहीन अन्तरेश्वराय यत्पूजित मया देव परिगुरुतस्तु मे आवाहनं न जानामि न जानामि तवार्जनं पूजाञ्जलिं न जानामि कमदान परमेश्वर मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्युजरा व्याधि पीड़ितं क्रमवंदनहि भगवते श्री श्री श्री सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः प्रार्थना नमस्कारां समर्पयामि कुलि गजानंद सरकार की जय द्वादश सुलिंगेश्वर महादेव की जय सियावर रामचंद्र भगवान की जय श्री अलकपुरी श्यामादेव की जय श्री देवपुरी श्याम महादेव की दीप नारायण भगवान की हिंदू धर्म सम्राट स्वामी श्री माधवानंद गुरु जी महाराज की विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वरानंद गुरुदेव की जय अनंत श्री विभूषित महामंडलेश्वर स्वामी श्री अवतार पुरी जी महाराज की परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी विवेक पुरी जी महाराज की जय आज के आनंद की जय नमः पार्वती पतये हर
1: महादेव शंभो
3: हस्ते जलमादाय अद्य पूर्वोच्चारते वंग्रा गुण गण विशेष निष्ठायां शुभ पुण्य तिथौ परम पूज्य स्वामी वर्यः महामंडलेश्वर सर्वेषां सन्यासिगणानां भक्तजनानां समुपार्श्वे अद्य दिने यथाशक्ति गुरु तृण पादुके पादुकेभ्यो श्री षोडशोपचार पूजना के रमणि श्री गुरुदेवताः प्रियताम् तत्तत् श्री शाम्ब शिवार्पणमस्तु विष्णवे नमो विष्णवे नमः ओम शक्राय नमः प्रणाम स्वामी
4: भजन्स एंड दर्शन एंड देन विवेक पुरुजी स्पीक्स एंड आई गो
5: Bhajan i darshan, pak Vivek Purji něco řekne a pojedu.
4: ओ यमुना जी

0: Om Boli Shri Deep Narayan Bhagwan Ki Jai, Shri Mangila Ji Maharaj Ki Jai.
1: सदाशिवसमारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरुपरंपरां गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः ओम शलकपुर जी महादेव की जय। देवपुर महादेव की जय। श्रीदीप नारायण भगवान की जय। हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी श्री माधवानंद पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वरानंद पूज्य गुरुदेव की जय। सैल्यूटेशंस टू द कॉस्मिक सेल्फ, सैल्यूटेशंस टू शलकपुर जी सिद्धपीठ परंपरा। माय डॉनर प्रणाम स्व बिलवड गुरुदेव हिज होलीनेस विश्वगुरु महामंडलेश्वर महेश्वरानंद पुरीजी एंड हरि ओम टू ऑल ऑफ यू हु आर प्रेजेंट हियर एंड दोज हु आर वाचिंग थ्रू स्वामीजी टीवी। मच लव एंड गुड इवनिंग फ्रॉम जॉर्डन वेयर वी आर स्टेइंग ब्यूटिफुली नाउ वेयर गुरुदेव्स प्रेजेंस एंड ब्लेसिंग इज सराउंडिंग द एटमोस्फियर। And today is a beautiful evening, as it's always, because it is said that for the bhaktas and mahatmas, the every night or every night is like Diwali. So for us, it's not only not once a year Diwali, but Diwali is all the time. Every night is Diwali. Why? Because the surrounding where

0: Come a little back. Thought up. मेरे पीछे आओ या मेरे पास में, अब दोनों एक साथ साथ रहो बेटा। और मास्क निकाल दो। साइड करो स्लो। थैंक यू।
1: श्री दीपनारायण भगवान की जय। देवेश्वर महादेव की जय।
0: थोड़ा दूर है।
2: हिंदुम सम्राट सतगुरु स्वामी माधवन जी भगवान की जय।
1: श्री 1008 विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमन स्वामी महेश्वरानंद जी पुरी जी गुरुदेव की जय।
2: Without Guru, we cannot know Brahma, Vishnu, Mahesh. Actually, Guru is not only Brahma, Vishnu, Mahesh. Guru is also Par Brahma, Parameshwar. Om.

0: पूज्य पाद अनंत श्री विभूषित परिभज काचार्य ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्री श्री श्री 1008 विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वरानंद जी पुरी जी गुरुदेव की जय।
1: देवपुरी समादेव
0: की जय।
1: माधवानंद जी भगवान
0: की जय।
1: दीप नारायण भगवान
0: की जय।
1: अलकपुरी जी महादेव
0: की जय।
1: भारत माता की
0: जय।
1: जय वाह।

नारायण। श्री दीप नारायण भगवान की जय। देवदि देव देवेश्वर महादेव की जय। हिंदू धर्म सम्राट स्मरवनंज भगवान की जय। विश्वगुरु ममलेश्वर परम समाशंज गुरुदेव की जय।

नम ओम नमः श्री प्रभुदीपाय श्री दीप नारायण भगवान की देवाधिदेव देवपुरी समादेव सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की अलकपुरी जी महादेव की सत्य सनातन धर्म की ओम शांति शांति शांति। भजन।

0: की जय। श्री सिद्धेश्वर महादेव की जय। श्री शलकुर जी महाराज की जय। हिंदू धाम समरथ सतगुरु स्वामी माधवरण जी भगवान की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वर जी योगी राज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। आज के आनंद की जय।
1: जय
2: वेरी गुड थैंक यू हरिओम Everybody, today is finished.

श्री दीपनारायण भगवान की जय, श्री देव पुरुष महादेवा की जय, धर्म सम्राट स्वामी मदवानंद जी भगवान की जय, विश्व गुरु महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेवा की जय, श्री अलख पुरुष महादेवा की जय।

0: ओमबोलाय श्री दीप नारायण अग्वान की जय।
1: श्री दीप नारायण भगवान की जय। श्री श्री देव पुरी जी।

Om Bole Sili Bhagavan Dev Purusha Mahadeva Ki Jai. Jag Musafir Dekhavo Kala Ki Motara Yadahe. Jag Musafir Dekhavo Kala Ki Motara Yadahe. Kis Malik Ka Nokar Tha Aur Kis Ki Chan Me Aaya Fasa. किस मालिक का नौकर था और किस कीचड़ में आया फंसा क्या जवाब आगे देवेगा नैना नींदा समाया रखे क्या

0: बोले श्री भगवान देव पुरुष महादेव की जय, श्रीमान गिला जी महाराज की जय। दीप नारायण भगवान की जय, अलख पुरुष भगवान की जय, धर्म सम्राट समोदवानंद जी भगवान की जय, विश्व गुरु महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय।
1: हम बोले श्री दीप नारायण भगवान।

0: भले सिद्धि भगवान देव पुरुष महादेव की जय। श्री सिद्धीप नारायण भगवान की जय। सियालकपुरी जी सीधा पिता परंपरा की जय।
1: श्री दीप नारायण भगवान की जय।

अम्बले श्रीदीपनारायण भगवान की जय, गुरुदेव की जय, श्री ब्रह्मानंद जी की जय।

0: श्री दीप नारायण भगवान की जय, गुरुदेवा की जय, श्री ब्रह्मानंद जी की जय।
1: Thank you.

0: श्रीदी प्रणायम भगवान की जय, गुरुदेवा की जय, सभी ऋषि मुनि महात्माओं की जय।
1: श्रीदेव पुरुष महादेव की जय, श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय, श्री सियाल पुरुष महादेव की जय, श्री स्वामी माधवानंद जी सतगुरुदेव की जय, श्री महामंडलेश्वर स्वामी लालानंद जी महाराज की जय, विश्व गुरु श्री परमहंस स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय।

महाप्रभावा की जय। श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। श्री स्वामी माधवानंद जी सत गुरु देवा की जय। महानंदलेश्वर स्वामी लालानंद जी महाराज की जय। श्री विश्व गुरु परमहंस स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेवा की जय।